रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
3: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है मेरा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with RJ Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

0: कौन आया?
1: अस्सलाम वालेकुम अदब एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चनार। जी हाँ, हाजिर है और जेसे उस लेकर शो। व्हाट्स अप?

रेडियो 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो, वो सब मैं हूं आपका साथी जॉक ज्यूस। याद रखिए आपने फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही अब हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मजीद मालूमात के लिए प्लीज लॉग ऑन टू www.radiochennai.com।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: क्या है आज के मौसम का हाल, क्या है खासम खास, क्या है बवाल, सब बताएंगे। जी हाँ, मौसम का जो तापमान है वो पल पल बढ़ते जा रहा है। कल के मुकाबले आज 1 डिग्री ज्यादा, आज दिन का मैक्सिमम रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। इट्स मोस्टली सनी फॉर टुडे। मोस्टली सनी इसलिए क्योंकि सूरज पूरी तपिश के साथ आपको परेशान कर सकता है, सो प्लीज मेक श्योर हीट वेव वगैरह और हीट स्ट्रोक से बचे रहें।
3: रेडियो चिना वेदर अपडेट।
2: ऐसा ना हो कि गर्मी से बचने के लिए आप 24 घंटे एसी में बैठे रहे। थोड़ा बहुत वेंटिलेशन का भी ख्याल रखिए। अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उस पर एसी चलाना समझ सकता हूँ मैं।

लेकिन डेस्टिनेशन से पहुंचने से थोड़ी देर पहले एसी का जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल में रखिए ताकि बॉडी को कोई टेम्परेचर शिफ्ट ना झेलना पड़े। We wish you all a great day ahead. अभी की बात करें तो UV index week पर humidity 69%, 0 पर है wind speed, visibility 4 kilometers. आज का sunrise हुआ 6:02 पर, आज का sunset होगा 7:04 पर. Radio. और इस frequency हर दिल की धड़कन, अगर आपका भी दिल लुट चुका है तो ये गाना आपके लिए है. Radio Channel, और इस frequency आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें. जी हाँ, जगजीत के साथ मजेदार शो व्हाट्सअप मेरी जान, सिटी हुक्ड, धड़काते रहो.

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: दोस्तों रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाता है
1: व्हाट्सएप पे
2: वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम पहुंचाते हैं वायरल चीजें आप तक वायरल ऑन व्हाट्सएप पे आइए बात करते हैं एक ऐसे स्कैम की जो क्या आज हो रहा है और जिसके बारे में हो रही है इंटरनेट पर चर्चा। जी हाँ, ये स्कैम हो रहा है लड़कियों के साथ। लड़कियों के सामने कोई भी आ जाता है महंगी परफ्यूम्स के फ्री सैंपल लेकर, और मिस्टेक तब हो जाती है जब कोई लड़की इस झांसे में फंस जाती है। जी हाँ, पार्किंग लॉट्स या पार्क और मार्केट जहां पर ऑफर किए जाते हैं ब्रांडेड परफ्यूम्स विद हेवी डिस्काउंट्स, और उसके बाद जब कोई लड़की इन्हें सूंघ लेती है तो बताया जाता है अनकॉन्शियस हो जाती है या ड्राजी या ग्रागी हो जाती है, और उसके बाद उसका अपहरण भी हो सकता है। देखिए, बचने की ज़रूरत है ऐसे स्कैमर से। अगर आपको कोई भी ये चीज़ ऑफर करता है कि मैम नई परफ्यूम है सस्ते में दे रहे हैं, आप बस टेस्ट एक सैंपल स्मेल कर लीजिए, आप देखिए इसकी महक कैसी है। सो नथिंग इज़ फ्री इन दिस रियल वर्ल्ड। सो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई आता है परफ्यूम का सैंपल लेकर और आपको इंसिस्ट करता है कि आप इसकी महक ले लीजिए, सो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि ये स्कैमर है और स्कैम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। सो इट इज़ वायरल, दैट्स व्हाई इट वॉज ऑन व्हाट्सएप। रेडियो चैनल 90.4 एफएम जॉग ज्यूस के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप। सीधे हक दरकाते रहो।

0: Zeus. कौन आया?
1: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 एफएम श्री अमरनाथ यात्रा अपडेट। जी हाँ, आज यात्रा जो है फाइनल कंक्लूड की गई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 इट कंक्लूडेड टुडे। 57 दिन चली ये यात्रा आज संपूर्ण हुई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फाइनल रिचुअल्स, फाइनल दर्शन यानी शनि मुबारक भी आज अंजाम दी गई। लोगों की बात करें तो तकरीबन 4,80,000 लोग इस यात्रा का हिस्सा इस साल बने। रेडियो चैनल 90.4 FM, बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, लव इज व्हेन गॉड सेज टू यू आई हैव क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर यू एंड यू से आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: of Zeus. Going yes. out.
1: दिल की धड़कन रेडियो चुना 90.4 एफएम और मेरे यार 888-999-0409 इज द नंबर जिस पर आप भेज सकते हैं अपना प्यार भर के अपना प्यार हम तक पहुंचाएं हमें बताएं क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनाने रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर अपनी बात सब तक पहुंचाएं आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज DM भी कर सकते हैं आप DM करने के लिए Instagram पर JockZeus सर्च करें JockZeus या आप सर्च कर सकते हैं Zeus the bad boy of radio DM करके भी आप हो सकते हैं शो में शामिल उबैद हमारे साथ जुड़े हैं लिखते हैं उबैद सर आपकी बहुत याद आती है आपको याद होगा कि एक सिंगर ने आपके साथ इंटरेक्शन की थी और आज भी उन लम्हों को मिस करता हूँ गॉड ब्लेस यू दोस्त इंडीड वी रिमेंबर एंड आइंदा अगर मौका मिला तो आने वाले वक्त में फिर से आपको बुलाएंगे फिर से दावत देंगे थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए जी हाँ व्हाट्सअप शो और व्हाट्सअप शो में आज बात हो रही है क्लिनिकल स्किन थेरेपीज की और जैसे कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और आज की दौर में अगर हम देखें तो बॉडी पार्ट्स को मॉडिफाई किया जाता है या चेंज किया जाता है या उनकी आकृति जो है उसे भी बदलने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है कंट्रोल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एडवांस टेक्निक्स जो कि स्किन स्ट्रक्चर पर काम करती है सेलुलर लेवल पर या डीप रूटेड इश्यूज को भी आज जो है हल किया जा सकता है या उन्हें रेक्टिफाई उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है अगर हम क्लिनिकल स्किन थेरेपीज की बात करें तो ये क्षेत्र इतना फलपूर रहा है कि आज लोग जी हैं लोग अपनी स्किन पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या ऐसी ऐसी थेरेपीज करवा रहे हैं कि उनकी स्किन का टेक्सचर से लेकर उनके चेहरे की आकृति उनकी बॉडी स्ट्रक्चर का जो टोटल सेल्यूलर सेक्शन है उस पर काम किया जाता है जी हाँ अब कैसे होता है और क्या फैक्ट्स है इससे रिलेटेड क्या हानि पहुंचती है इंसानी जिस्म को या इंसानी जिस्म के लिए ये फायदेमंद है बात चलती रहेगी बात जारी रहेगी फिलहाल कुछ ट्रैक्स आपके लिए हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्स अप मैं हूं जॉक्स्यूस आप यूं ही बने रहें सुनते रहें हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनार 101.3।

देखिए कुछ जुदाइयाँ होती है और उसके बाद फिर सवेरा आता है और फिर 12 बजे शो चिनार बीट स्टार्ट हो जाता है। 90.4 रेडियो चिनार बीट आगाज हो चुका है शो चिनार बीट के फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि बहुत ये है शो चिनार।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

कि आपके पास वो नंबर है जो आपको डायरेक्ट हमारे तक पहुंचाता है, हम तक आपको एक कनेक्शन बिल्ड करके देता है, एंड दैट इज 8899-0490. आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते, बता सकते मुझे क्या है हालात, जज्बात और ख्यालात.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: Don Jesus on the mic.
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
3: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
3: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
4: जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM। आज जुम्मतुल मुबारक है और आज खास मौके पर हम आपके लिए डिवोशनल ट्रैक्स चलाते हैं, जहां पर हम आपके लिए ज़्यादातर नाते कलाम, सूफी कलाम, और ट्राई करते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त बिताएं और हमें याद करें। और जब भी रेडियो चुनार आप सुने, आप ऑन करें रेडियो का बटन और आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे, तो आपके कानों तक वो मीठी मीठी, वो कहते हैं ना कि एक जब धुन आती है और उसमें ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, तो दिन भी बन जाता है और दिल भी पुरसकून हो जाता है।

लाल के लिए आपके लिए डिवोशनल ट्रैक्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, आप अपना फेवरेट ट्रैक भी सुन सकते हैं बराबर 1:30 बजे। फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं और टॉपिक के रिलेटेड भी बात करेंगे। आप सुनते रहे रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम। जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: टोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: देखिए, मुलाकात तो है और अनकही बातें भी है, और कुछ बातें जो मैंने बस अब छुपा के रखी हैं दिल में मेरे, जो मैं कल बोलने आऊंगी बराबर 12 बजे। देखिए, अभी शैतानिया ड्रामा और हंगामा करने आ रही है कौन, आरजे खुद ही बता दे रही है,
1: आरजे अस्ट्रा।
0: देखिए, जब भी ऐसा होता है ना कि मैं स्टूडियो में क्लोज करने वाली होती हूँ, अचानक से अस्ट्रा इज कमिंग, ए मेरा शो इज लाइक जीवा, सो आई एम लाइक ओके ओके ओके वेट कर थोड़ा सा, बट शी वाज ओवर एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक ब्रो आजा आजा आजा आजा,
1: शुरू कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं।
0: और अभी आप तो शुरुआत हो चुकी है, नजरा इज सुपर डुपर एक्साइटेड, थोड़ी देर के बाद आपसे मिलेगी। देखिए, थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है, और देखिए इतनी मुस्कान लिए, बातें लिए, और क्या कुछ होगा वो तो यही बताएंगे। सो अभी शुरुआत हुई है शो
1: हंगामा की, बहुत सारा ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, क्या बजेंगे, लाइफ का ऐसा फिलोसफी था जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है।
0: बिल्कुल, सो शुरू हो जाए, अभी ड्रामा है, हंगामा है, एंड शी विल बी राइट बैक। फिलहाल मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बराबर 12 बजे, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

आगे निकल के अंदाज बदल के देखिए, अंदाज तो हमारा वही है, हंगामा में ड्रामा होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट्स होते हैं, और अभी टाइम है रेलवे अपडेट का। और आज की अपडेट यही है कि जो भी लोकल सर्विसेज हैं वो आज बदल

schedule है and you can like talk to and you can get the offline and online जो भी schedules हैं वो आप avail कर सकते हैं. जो offline है वो आपको respective stations के billboards पे मिल जाएगा. Online Rail One official Indian Railway apps. और देखिए आज का जो टॉपिक है वो आज लड़कियों के बारे में है, बट कुछ देर बाद पता चलेगा कि आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM में. बस यूं कहिए और यूं वापस आए.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: ओ मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंग लेना, मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Ok. Ton mari, Major. Να τα δούμε, ρε.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ अस्टर और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम. जैसा कि टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट द वेमेन हु हैव फॉट अगेंस्ट चैलेंजेस. देखिए, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट ये बस उतनी देरी वो जो टफ टाइम होता है उसको ख़त्म करके जो एक बहुत ही खूबसूरत रिवॉर्ड जिंदगी हमें देती है उसका वेट करना वर्थ इट होता है. और काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें समझें और प्रैक्टिस करें कि कैसे चैलेंजेस जो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं उन्हें हमें बहुत स्पोर्टिंगली लेना है. और कहते हैं कि इन हिंदू माइथोलॉजी ऑल्सो जो शनि भगवान होते हैं वो जब आपकी लाइफ में आते हैं कि आपको चैलेंजेस मिलते हैं, आपको बहुत सारी हार्डशिप देखने को मिलती है, दैट इज़ जस्ट द टफ टाइम. उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आता है, बिकॉज जब आप कहते हैं ना, वो हीरा प्रेशर में ही, टेम्परेचर में ही कुंदन बनता है. और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस प्रेशर, उस चैलेंजेस को पार करें. आप रेजिलिएंट हो जाते हैं, आप और ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें एक कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करते हैं आपकी लाइफ में, एक कैरेक्टर बिल्ड करता है ताकि आप अगली जो अगला चैप्टर आपकी ज़िंदगी का है उसके लिए तैयार हो पाएँ. मैं वंसरा संतरे ये वीडियो सुना रहा, और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई फेज़ आया है, फिर आपने कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया है, या यू हैव वेंट थ्रू दैट. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम. शेयर कीजिए हमारे साथ भी अपने विचार, क्योंकि विचारों से बढ़ता है प्यार, तभी तो हम हैं सही मेरे यार.

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और शुरू हो चुका है गेम ऑन, क्योंकि गेम ऑन जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो, या कभी कभी हम ऐसे फैक्ट्स ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और यूजफुली उनके बारे में बात नहीं होती। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि कुछ ही ट्रैक्स के बाद हम आज की अपडेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on.

0: to Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: अरे वेलकम बैक टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है हंगामा और अभी है सेगमेंट गेम ऑन और आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप के बारे में जहां पे 16 टीम्स में से फिफ्थ प्लेस पे इंडिया आई है एंड दिस इज द बिगेस्ट विन in the World Cup of Hockey Women. Oh my God, I'm so happy to announce it because pichle 50 saalon mein se pehli baar aisa hua hai ki 16 teams mein se 5th place par hamara Hindustan aaya hai and that is something to be proud of. ओके दम यंगर देखिए ओके तो चलता रहेगा बट अभी मेरे जाने का समय आ चुका है और आप तक हमने स्पोर्ट्स की अपडेट पहुंचाई बट अभी चाचा बाय बाय एंड जाते जाते बस इतना ही बोलूंगी कि अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और अपने दोस्तों से प्यार करते रहिए और देखिए मेरी भी एक दोस्त यहाँ पे अभी मेरा वेट कर रहे हैं जिनका नाम आरजू दीवा है. शी इज़ वेटिंग फॉर मी कि मैं कब अपना शो कम्प्लीट करूँ और हमारा शॉपिंग का प्लान है. ओके थैंक यू सो मच और आज का बस इतना ही है आपका और मेरा साथ यहीं तक था. कल वापस आऊंगी करने आप सबको एंटरटेन. आज के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे ओवर एंड आउट.
2: ओके.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
3: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।
2: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
4: हम है टीम

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मांग लेना, मोटरसाइकिल
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jerry B. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

ऑलराइट, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए बस इंसान बोलता है कि ये बस जिंदगी से चले जाएं, यू नो दे शुड लीव दिस स्पेस। और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल के करीब होते हैं, और जो कितना भी दूर चले जाएं उनके लिए आपके दिल की धड़कनें तेज होती हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके और क्लोज आए। आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। मैं हूं साहिल मुजफ्फर। एंजॉय सम सुपर कूल बॉलीवुड म्यूजिक। शो का नाम दिल की बात साहिल के साथ।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: Pani. पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harj Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंज

0: गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहां के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM. And we care for you.
2: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम। राहुल

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 एफएम।

मनी।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सुनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करारा जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर मैंने आग जो मिलाई।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात, एक बात, लेकिन एक बात,

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।

0: गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: न आए करार। ओ गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुद्धन तीर भी टक्कर, क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूँ न आए करार।
1: हटो जाओ

0: और बचाओ, ओ मुर्गे, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना तारा, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: बात यही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।